साछे साथ रे सबको सास मावे। रेग कह रहे भरपूर राम नाम देवा में सुना लिया प्रचित जाए तो मुख अंतर बाय जो जमै जो।

दया कपाह संतोख सूत जात गंडी सत वट जी का हई ता पांडे कंत नाए टुटे नाम लगे नाए हुजले न जाए तन सो मानस नानका जोगल चले।

साहिब दयाल कृपा करे ता साई कार कराई सी सो सेवक सेवा करे जिस नु हुकम नाई सी हुकम निया प्रमाण तक सोई का मर पाई सी कसमे पावे सो करे मन चित्या सो मर पाई सी कादर के पैदा जाई सी कादर के

गौ ब्राह्मण को कर लाओ गोबर तर ना जाई पोती टिका तैज माली धान मलेशा खाई अंतर पूजा पड़े कते बा संजम तुरका।

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सपं गुरप्रसाद चक्र चेहन अर वर्ण जात अर पात नहन जे रूप रंग अर रेख पेको कहन सकत के अचाल मूरत अनुभव प्रकाश सिम तोज कह जाय होट इंद्र इंद्राण सहान गणित जाय त्रिभावन महीप सुर नर असर नेत नेत बन त्रिण कह सर्वनाम कथा कवन कर्म नाम वर्णत समत जिह सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटा खैन जिह सतगुर सिमरंथ हृदय हर नाम दिनों दिन जे सतगुर सिमरंथ जी की तप्त मिटावै जे सतगुर सिमरंथ रिद सिद्ध नव निद पावै सोई रामदास गुर वल भण मिल संगत धन धन करहो जे सतगुर लग प्रभ पाई है सो सतगुर सिमरहो नरह सतगुरे आयो शरण तुहारी मिला सुख नाम हर सोभा चिंता लाहे हमारी अवरण सूझा दूजे ठहर हार प्रयोता द्वारी लेखा छोड़ लेखा छूट है हम निर्गुण लेहो उबारी साध बख्शिंद सदा मेहरबाना सबना दी आधारी नानक दास संत पाछ परे राख लेहो एहो बारी तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुम ही सजन सहेले राखो राखन हार दयाला

दर्शन परसया गुरु का जन्म मरण दुख होवा सिफत खसाम दी नूर अरसह कुरसह तुद जिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी सजना सचा पातशाह सिरसाह।

सर्व कला भरपूर दिसे जत कथा नानक दासन दास तुद आगे बिनवता। श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता तर

प्रमत जोनी ते नाम सिमृत तारे नानक दर्श प्यास हर जियो आप ले हो समा।

0: अंत ना जाई लखिया रहाओ। जात में जो जोत में जाता अकल कला भरपूर रहया। तू सच्चा साहेब सिफत सवालियो जिनकी तीसो पार पया। कहो नानक करते किया बातां जो किश करना सो कर रहया।
1: सो दर राग असा महला पहला

शरण परे की राखहु शर्मा। जप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साधना जान्या हर राया। कहो नानक हम नीच करम्मा,

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कवियो बाच बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दै रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सबे तुम कावहो आप हाथ दे मोहे बचावहो सुखी बसे मोरो परवारा सेवक सिख सबे करतारा मोर अच्छा निज कर दे करिये सब बैरन को आज संगरिये पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊ जो वर चांस तुम ते पाऊ सेवक सिख हमारे तारिया चुन चुन सत्र हमारे मारिया आप हाथ दे मुझे बरिया मरण काल का त्रास निवरिया पूजो सदा हमारे पच्छा श्री अस तुझ जु करिय हो रक्षा राख लिहो मोहे राख नहारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा बवतरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा जूथियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनाया देव दैत जच्छन उपजाया आदंती कै अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिसही को हमारी सकल प्रजा जिने आप सवारी शिवकन को शिवगुण सुख दियो सतरन को पलमो बद कियो कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर स्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछानै घट घट की पट पट की जानै जबद करख करा कर तारा प्रजा धरत तब देहे अपारा जब करख करत हो कब हो तुम मैं मिलत दे तर सब हो जीते बदन सृष्ट सब धारै आप अपनी बूझ उचारै तुम सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेद अर आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब याद नील नाद सांब ताका मूढ़ चारत भेदा जाको भेव न पावत बेदा ताका कर पाहन अनुमानत महामूढ़ कछ भेद न जानत महादेव कौ कहत सदा शिव निरंकार का चीनत नह पेव आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तह तेती तुमरा लखा न जाए पसारा कहे विद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक भयो राव कही भूपा अंडज जेरज सेत जकीनी उत्कुज खान बहर रच दीनी
कहूँ फूल राजा है बैठा, कहूँ सिमट भयो शंकर इकैठा। सगरी सृष्टि दिखाए अचंपव, याद जुगाद स्वरूप सुजंपव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख बार सिख संगरो। दुष्ट जिते उठो तुत पाता, सकल मलेश करो रणकाता। जे अस तुझता शरणी परे, तिनके दुष्ट दुखत होए मरे। पुरख जमन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्य है, ताके काल निपट नह है। रक्षा होए ताए सब काला, दुष्ट रिष्ट टरे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो, ताके ताप तनक मह हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शास वै सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास दे ताहे बारा। जिन नर नाम तिहारो कहा, दारिद दुष्ट दोख ते रहा। खड़ग के तमें शरण तिहारी, आप हाथ दैले हो बारी। सर्ब ठौर मोह सहाई, दुष्ट दोख ते ले हो बचाई। खड़ग के तमें शरण तिहारी, आप हाथ दैले हो बारी। सर्ब ठौर मोह सहाई, दुष्ट दोख ते ले हो बचाई। सवैया पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आंख तरे नहीं आन्या। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहे मत एक न मान्या। सिमृत शास्त्र वेद सबै, बहु भेद कहे हम एक न जान्या। श्री असपान कृपा तुमरी कर, मैं न कहियो सब तो हे बखान्यो। दोहरा सगल द्वार को शाड़ के

जावे, चित आवण का सदका सर्व सुख होवै। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रक्षिया रियायत। देग तेग फतेह बिरद की बैज पंथ की जीत, श्री साहिब जी सहाए। खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहे गुरु, बोलो जी। सिखा नू सिखी दान के सुदान रहत दान, बाबेग दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान। श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनार, चौंकियां झंडे बूंगे जुग जोगी अटल, धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु।

हम प्रेम बदन तुम बाधे अपने छूटन को जतन करहो हम छूटे तुम आराधे जो हम बंदी मोह फास हम प्रेम बदन तुम बाधे अपने छूटन को जतन करहो हम छूटे।

भगत नहीं संतपा, कह रविदास भगत इक बाडी, अब हिका स्यों कहिया जा कारण हम तुम आराधे। सो दुख अजहु सहिया कह रविदास भगत इक बाडी, अब का स्यों कहिया जा कारण हम तुम आराधे।

हम अवगुण परे एक गुण नहीं, अमृत शाड भिखै भिख खाई, माया मोह परम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई, एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, ते मिलंत जम त्रास मिटाई, एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखहु शरणाई, एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखहु शरणाई। सुकहु टल गुर सेवियै, अहनिस सहज सोभाए, दर्शन परसियै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाय, होवै सिफत खसम दीन, नूर अर सो कुरसो चटियाँ, तोद डिठे सच्चे पातशाह, माल जन्म जन्म दी कटिया, सज्जन सच्चा पातशाह, सिर शाह दशाहो, जिस पास बैठिया सोहिया, सब ना दावे साहो, सज्जन सच्चा पातशाह, सिर शाह दशाह, जिस पास बैठिया सोहिया, सब ना दावे साहो।

रुद्धा कंठ शब्द नहीं उच्चरै, अब क्या करहे परानी, नैनहु नीर बहै तन खीना, पै केश दुद्धवानी, रुद्धा कंठ शब्द नहीं उच्चरै, अब क्या करहे परानी।

पै कित फिराय। आओ मैं दीर्घ रोग है दारू भी समाय। कृपा कर जा पणी तांकुर का शब्द कमाए।

0: जिनके हृदय सच
1: बसाया। मूर्ख सच न जाननी मन की जिन को आया, विच दुनिया काहे आया, विच दुनिया।

0: कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पहनहार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूपया पार कूड़ मिया कूड़ बीबी खप होए खार कूड़ कूड़े ने वह लगा विसरिया करता किस नाल खिचे दोस्ती सब जग चलन हार कूड़ मिठा कूड़ मख कूड़ मैपूर नानक मखाने बेनती तुध बाज कूड़ो कूड़ महला पहला
1: सच ता पर जानिया जर दे सच्चा खोई कूड़ की माल उतरा तन करे खच्चा तोय सच ता पर जानिया जा सच तरे प्यार नाउ सुन मन रसिया ता पाए मोख द्वार सच ता पर जानिया जा जुक्त जान जियो थर्त का साध कविच दे करता भी हो सच ता पर जानिया जा सिख सच्ची ले

गुरजहाज खेवट गुरु गुर बिन तरया न कोए गुर प्रसाद प्रभ पाइया गुर बिन

0: गुरमुख संगत सब विचारो, वाहो वाहो का बड़ा तमाशा।
1: या खेल बड़ मेहल तमाशा, वाहे गुरु तेरी सब रचना। तू जल थल गगन पयाल पूर रहया, अमृत ते मीठे जाके बचना। माने ब्रह्मादिक रुद्रादिक काल का काल निरंजन जचना। गुर प्रसाद पाइये परमारथ, सतसंगत सेती मन खचना। या खेल बड़ मेल तमाशा, वाह गुरु

दर्शन परसया गुरु का जानम मरण दुख होवै सिफत खसाम दी नूर अरसह कुरसह तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी सजन सच्चा पातशाह सिर साहंद जिस पा

आप नड़ा घर हर रंगो की ना माणे आनड़िए मानड़ा काय करे आप नड़ा घर हर रंगो की ना माणे सह नेड़ा तन कमलिए

ऐसा रंग राती सहज की माती, आनस भाई समाणी, सुंदर साई स्वरूप विचखणा, कहिया सा सियाणी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तलंग महला पहला, यानड़िए मानड़ा काए करे, आपनड़ा का

सतगुरु बोलो जे सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान बिवेक दान विसाह दान भरोसा दान।